0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मानव जीवन में व्यक्ति जे कई विचारे छे तेवू तेना जीवन में बनतु होय छे। जेवा जेना विचारो अने कल्पनाओ तेवा तेना कार्यो अने परिणामो होय छे। नेपोलियन बोनापार्ट नी अनेक वातो तमे सांभळी हशे, वांची हशे। ते केवुं व्यक्तित्व हतुं के जेमनामां निर्भयता, अडगता, आत्मविश्वास, त्वरित निर्णय शक्ति, नेतृत्व जेवा अनेक सद्गुणोनो खजानो हतो। तेमणे कहेलुं के अशक्य जेवो शब्द मारा शब्दकोशमां नथी। अने आ वात परथी आपणे पण ए ज शीख मेळवी जोईए के कोई पण कार्य अघरू नथी होतुं, ए कार्य करवा माटेनी धगश आપણામાં હોવી જોઈએ। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો પાલનપુર। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM।

श्रोता मित्रों, लोगों पर तीन एहसान कीजिए। फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। आ पंक्तियों कही जाए छे कि जीवनमां आपणे कोईने कशुं आपी न शकीए तो छीनववानो प्रयास शा माटे करवो जोईए। बस आम चालता चालता, बैठा बैठा, विचारता विचारता कंई ज करवा माटे नथी तो कोईकने हैरान अने परेशान शा माटे करवो जोईए। जीवन छे जीववा

0: चिते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं चित्तं विष्णे भुवनं विष्णम् अतोभिलासु यदि ते सुखे स्यात् चित्तप्रसादे प्रथम यत्स्वे। मन प्रसन्न होय तो सर्व जगत प्रसन्न देखाशे, मन खिन्न हशे तो आखो जगत खिन्न देखाशे। एटले सुखनी आकांक्षा जो होय तो कायम मन ने प्रसन्न राखवानु प्रयत्न करो जोई। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

म्हणजे ती रेडिओ स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवडी मंडळ संचालित आ रेडिओ स्टेशन पर तमारा प्रतिभाव तमारा संदेशाओ अने तमारी वातोने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडिओ पालनपुरना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वातने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडिओ पालनपुर पर तमारी वातने पहोंचाडवा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9596889599668। ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 9596889599668 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सामर्दा रहो। 90.4 FM रेडियो पालनपुर।

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो पालनपुर पर हूँ छू तमारो दोस्त तमारो होस्ट आरजे एआर आपना अवाज समा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जेने बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडल संचालित करे छे तेना पर हूँ दर अठवाडिये सुधामूर्ति लिखित अने सुधा मेहता द्वारा गुजराती में अनुवादित नवल कथा डॉलर वहु लईने आवुं छुं। वर्षो पहला अलग ज भाषामां अलग ज राज्यनी पृष्ठभूमिमां लखायेली आ वार्ता आजे पण अमेरिका अथवा विदेश तरफनी आपणा गुजरातीओनी गेलछाने पण प्रदर्शित करे छे। परिवारने ऊंचू लावा माटे मध्यम वर्गीय के पछी मध्यम वर्ग करता नीचेना आर्थिक पोतानुं अनुसंधान धरावता परिवारो એ હંમેશા દીકરો એ વિદેશ ગમન કરે અને ત્યાંથી ડોલર કમાઈ પાછા આપે એ અગત્યનું હતું। એ જ દીકરાની વહુ એ ડોલર વહુ તરીકે ઓળખાતી માન અને મર્યાદામાં પણ એને મહત્વતા વધુ આપવામાં આવતી। ભલે ને

0: शब्द
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।

आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम

0: पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराडा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराडा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टॉक्स किस देश के किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टॉक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते
2: हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी,
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है, जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी।
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका

0: पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
0: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
0: जी,
1: हैं
0: जरूर।
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
0: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी।
0: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी,
0: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
0: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी,
0: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
0: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या लोग तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
0: वंचित लोग जो हैं
1: जी।
0: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: उन सबको
0: शामिल करती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं या ड्रॉप आउट रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: इनमें लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी।
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों का
1: जी,
0: लड़कियों का
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़े या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सके,
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने

0: छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST
1: आदिवासी लोग,
0: जनजातीय लोग है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो हमारी टेक्स्ट बुक में, इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी,
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो हाँ, उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: हाँ, तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है, लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे
0: जी।
1: तो अब आते हैं NCERT पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि NCERT के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ

0: वुमेन स्टडीज
1: जी,
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि वुमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली वुमेन तक सीमित ना रखें
1: जी।
0: जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ वुमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: है। जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना
1: जी।
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह है उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
0: हाँ,
1: है ना?
0: जी
1: जी जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है।
0: हाँ, जी। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है।
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए

0: एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी,
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
1: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ बैठ सकते हैं।
0: जी
1: जी।
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और
0: खाना बनाने के लिए लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी।
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ। तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं।
0: न्यूट्रल शब्द भी।
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह सकते हैं।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं, तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है
1: जी।
0: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
0: जी। एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर

करती रहा। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि आज के सभी गाने पुराने तो हैं, लेकिन एक नई आवाज में है। वो आवाज जिसने YouTube पर जादू बिखेर दिया, वो आवाज जिसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं, वो आवाज जिसे आप बखूबी जानते हैं, वो जिसने हिंदी फिल्मों के गानों को बड़ी खूबसूरती से अपने अंदाज में पेश किया और बॉलीवुड में धत तेरी की, इश्क बुलावा, फकीरा जैसे गानों से अपनी वर्सिटैलिटी भी प्रूव की। मैं बात कर रही हूँ सिंगर सनम पुरी की, जिनके बैंड का नाम भी है सनम। अब देखिए, पर्सनली मुझे इनके गाने कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि सनम पुरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा इसलिए भी कि जिस तरह से ये 60s, 70s, 80s के गानों को रिक्रिएट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, जो सोल है गाने की, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर म्यूजिक। वैसे आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि सनम पुरी, जो कि सनम बैंड के लीड सिंगर हैं, उन्हें म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ्री स्टाइल डांसिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वैसे जानते हैं आप, सनम पुरी के बैंड का नाम पहले सनम नहीं, कुछ और था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो उनके पहले सुपर डुपर हिट कवर सॉन्ग के साथ, जो कि था लग जा गले। बड़ा ही प्यारा वर्जन है, सुनिएगा जरा।

आज के सारे पुराने गानों का कवर वर्जन सनम बैंड के बनाए हुए ये गाने जो आप सुन रहे हैं वो सभी मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे हर बैंड के फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। सनम बैंड की कहानी ये है कि 2003 में वेंकी जो कि बेस गिटारिस्ट है और समर जो कि लिरिसिस्ट या लीड गिटारिस्ट या कंपोजर सभी चीज़ें हैं ये दोनों मस्कट में बैचमेट्स हुआ करते थे। दोनों को ही म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था तो इसीलिए दोनों ने एक बैंड फॉर्म करने का सोचा, जिसके लिए समर ने अपने छोटे भाई सनम को कॉन्टैक्ट भी किया कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ में एज अ सिंगर। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये स्कूल कॉलेज में जो बैंड्स बनते हैं वो अक्सर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सभी लोगों को अपनी अलग अलग राह में अलग अलग दिशा में भेज देता है। सनम और समर दिल्ली चले गए थे, कॉलेज के लिए इंडिया आ गए थे और दिल्ली चले गए थे और वहीं अपने कॉलेज के रॉक सर्किट्स में बिजी हो गए। सनम पुरी को उनके सिंगिंग के लिए अवार्ड्स भी मिलने लग गए थे। वहीं वेंकी बैंगलोर में बेस प्लेयर थे, बहुत सारे बैंड्स के साथ में वो प्ले किया करते थे। फिर एक कॉलेज के इवेंट के थ्रू वेंकी की मुलाकात केशव से हुई थी। फिर भी ये सभी लोगों का उस समय एक बैंड नहीं बन पाया था क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोने में रह रहे थे। फिर ईयर 2009 में समर और सनम मुंबई आए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। 2010 में सनम, केशव और समर ने एक नेशन वाइड पॉप बैंड हंट सुपरस्टार्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल राउंड में वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया। इस हंट में सनमपुरी के बैंड ने द SQS प्रोजेक्ट के नाम से एंट्री ली थी और जहां 1600 से भी ज्यादा इंडियन बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था वहां द SQS प्रोजेक्ट को विजेता घोषित किया गया, गिविंग द बैंड अ नेम ऑफ SQS सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई। बस उन्होंने अपने बैंड का नाम SQS क्यों रखा था और फिर सनम नाम कैसे मिला बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं इसी बैंड का बनाया हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना, वर्जन ऑफ है अपना दिल तो आवारा।

मैं हूं रुचि आपके साथ और आज आप द सनम बैंड के सभी गाने इनके कवर वर्जन ऑफ सम ऑफ आवर फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स जो सुन रहे हैं। वैसे मैं बात कर रही थी कि कैसे इनके बैंड का नाम पहले द एस क्यू एस प्रोजेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके बैंड में एक और एक मेंबर हुआ करते थे क्यूएश नाम से, तो इसलिए समर, क्यूएश और सनम इनके नाम पर ये एस क्यू एस बना था। लेकिन म्यूजिक हंट के फाइनल्स में जब वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया तब इस नाम का कोई महत्व ही नहीं बचा था क्योंकि अब और भी ज़्यादा बैंड मेंबर्स हो गए थे। फिर भी उन्हें इस नाम के साथ 3 साल तक काम करना पड़ा था क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी के साथ उनका 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन फिर जब 3 साल पूरे हुए और उनकी मुलाकात उनके बिजनेस मैनेजर बेन थॉमस से हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे नया नाम रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों का ये फीडबैक था कि जब भी कुछ वीडियोस या फिर इनके गानों के लिंक्स लोगों को ये फॉरवर्ड करते थे, मैसेज करते थे, तब लिंक पे क्लिक करने से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि SQS प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है और इसलिए वो लोग उस लिंक पे क्लिक ही नहीं करते थे। मतलब SQS प्रोजेक्ट डिड नॉट रियली फील लाइक अ बैंड्स नेम। तो फिर सनम और उनकी टीम ने बैंड का नाम चेंज करने की ठानी। काफी डिस्कशन और कुछ 200-300 नाम सोचने के बाद, उनके नेम्स का कॉम्बिनेशन सोचने के बाद और फिर कोई भी नाम ना जमने के बाद एक दिन

एक शो के पहले ये लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और कहीं पर उन्होंने सनम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ देखा। और बस क्या था, वो देखते ही इनके दिमाग में आया कि हमारा लीड सिंगर भी सनम है। सनम एक ऐसा नाम है जो कि यूजुअली हिंदी गानों में यूज किया जाता है, तो क्यों ना बैंड का नाम भी सनम ही रखा जाए। और कुछ ऐसे सनमपुरी के बैंड का नाम सनम ही बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनमपुरी को म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए एनकरेज किसने किया था? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना। सनमपुरी की आवाज में है, सनम बैंड का ये रिक्रिएटेड वर्जन है। आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि इतने सिंपलिसिटी से इस गाने को इन लोगों ने परफॉर्म किया है कि मैं क्या बताऊं। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

आज हम सनम बैंड के सभी वो गाने आपको सुना रहे हैं जो कि उन्होंने 70s 80s के मेरे आपके फेवरेट गानों के रिक्रिएशन बनाए हैं, यानी कि कवर वर्जन्स बनाए हैं। और ये सभी खूबसूरत गाने आप मेरे सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं। वैसे सनम पुरी को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से प्रोफेशनली म्यूजिक सीखा नहीं था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट गिटार, कीबोर्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद ही प्ले करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी अपने स्कूलिंग के बाद सनम दिल्ली में रहे थे 7 सालों तक, और उसके बाद जब वो मुंबई आए तब जाकर उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली लेना शुरू किया। पर एक प्रॉब्लम थी सनम पुरी के साथ, जिसके बारे में वो खुद बताते हैं कि पहले ना वो सिर्फ गाने गाते थे लेकिन उन गानों को महसूस नहीं कर पाते थे, गानों के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ही वॉजंट टू कम्फर्टेबल विद म्यूजिक, क्योंकि वो बड़े शाय किस्म के थे और उन्हें ये आइडिया भी नहीं जमता था कि वो किसी और के कंपोज किए हुए गाने गाएं। सनम चाहते थे कि वो खुद ही गाने लिखें, कंपोज करें और गाएं, तब जाकर के शायद वो गाने को फील कर पाएंगे। इसीलिए उनका प्लान प्लेबैक सिंगिंग करने का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बनाना चाहते थे और अपने बैंड के साथ मिलकर के, इसलिए उन्होंने खुद ही इन गानों के ऊपर वीडियोस बनाने का भी तय किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो ही गई। उनके गाने जैसे धत तेरी की और इश्क बुलावा बड़े हिट बन गए। कैसे मिला था सनम को इन सॉन्ग्स को गाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आखिर आई कैसे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सनम पुरी का अगला गाना सुनाते हैं आपको, 90s का सबसे रोमांटिक गाना सनम के अंदाज में। स्टे ट्यून्ड।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। जानते हैं सनमपुरी के जो मैनेजर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के भी मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने ही सनम की मुलाकात विशाल शेखर से करवाई। और कुछ ऐसे विशाल शेखर ने सनम को अप्रोच किया कि वो आए और आकर के धत तेरी की गाने को गाएं। लेकिन ये गाना जो था वो काफी आसान था, इसलिए सनम ने हाँ भी

दिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। जब ये गाना इतना अच्छा चल गया, हिट हो गया, तो विशाल शेखर ने सोचा कि इश्क बुलावा जो सॉन्ग है उसके लिए भी सनम को बुलाया जाए। इनिशियली सनम को लगा कि ये गाना भी धत तेरी की सॉन्ग की तरह ही होगा, यानी कि बस कुछ ही देर में निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गाना काफ़ी डिफिकल्ट निकला, लेकिन सनम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिलीज हुआ तब तो मानो कि पूरी की पूरी किस्मत ही पलट गई सनमपुरी की। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसी गाने से सनमपुरी ने हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और सभी लोगों ने सनम को और सर्च करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे उनके भी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फैन फॉलोइंग जो थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसे ही गाने जिनके कि हम बहुत बड़े फैन हैं, 60s, 70s, 80s के सुपरहिट सॉन्ग्स जिनका कवर वर्जन बनाया है सनम द बैंड ने, वही यहाँ पर अभी आपको सुना रही हूँ। सुनिए ये अगला गाना, ये रात भीगी भीगी।

0: तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को, बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम
1: ज्यादा।

बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।

0: गुलजार साहेब एक बहुत मजानी बात कहे छे कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। सांभळीए आपणे गुलजार साहेब ने पछी साथे एमनो बैक टू बैक मस्त मजानो सॉन्ग साथे।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थीं।

उंधे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था। बस एक ही रूह जागती थी। बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी। कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो। वो सारी नज्में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको। मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है, बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो मैं पास बैठूं, मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी। उदास लगते हो एक कहती है पास आकर, जो कह नहीं सकते तुम किसी को, तो मेरे कानों में डाल दूं राज अपनी सरगोशियों के, लेकिन गर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे। भड़क के कहती है एक नाराज नज़्म मुझसे, मैं कब तक अपने गले में लूंगी तुम्हारी आवाज की खराशें। एक और छोटी सी नज्म कहती है, पहले भी कह चुकी हूं शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पे रखते कुछ बोझ मैं उठा लूं। वो चुप सी एक नज्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे, बस न जाने क्या है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है। अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं। मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे ये एहसास हो रहा है जब उनको तखलीक दे रहा था वो मुझको तखलीक दे रही थी। एक नकल तुझे भी भेजूंगा, ये सोच के ही तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं। अल्फाज उतर आते हैं कागज पर, लेकिन आवाज की शक्ल उतरती नहीं, रातों की स्याही दिखती है। जैसे झन्ना के चटक जाए किसी साज का एक तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक जर्ब सी पड़ती है कहीं सीने के अंदर, खींचकर तोड़नी पड़ जाती है जब तुझसे निगाहें। तेरे जाने की घड़ी आह बड़ी सख्त घड़ी है।

बस एक झगड़े का लम्हा था। दरो दीवार पर ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब्द किसी ने काट ली नब्जें, न की आवाज तक कुछ भी कि कोई जाग न जाए। कुछ ऐसे आकर गिरा है सोते में शाख से फूल मेरे चेहरे पे, जैसे हौले से रात तुम नाम लेके मुझको जगा रही थी। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सर मूंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते। बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है। खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, होले से चूम के दो नींद से छलकी पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटा कर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ। मैं जगाऊंगा तुझे नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना, उस दम दूर ठहरे हुए पानी पे सहर खोलेगी आंखें। सुबह हो जाएगी तब, सुबह जमीन पर। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला होता पा। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला होता पा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी हैं, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से

आत्माओं को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने।

0: सुनार जी,
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गर्माइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। जिस्म सौ बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह

0: तार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है?
1: ज्यादे
0: कल की रात गिरी थी शबनम, हौले हौले कलियों के बंद होंठों पर बरसी थी शबनम। फूलों के रुखसारों से रुखसार

दिल की मध्यम मध्यम हलचल में दो रूहें तैर रही थीं, जैसे अपने नाजुक पंखों पर आकाश को तोल रही हूं। कल की रात बड़ी उजली थी, कल की रात उजले थे सपने, कल की रात तेरे संग गुजरी। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। कल सुना है जमी से उठ गया है वो। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है यह हयात।